सेव की संतो के जिन सच्चो सच ध्याय उन मंदे पैर न रखे कुछ कर धर्म कमाया उन्हीं दुनिया थोड़ा बनार पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला ने देवे चढ़े सवाया।

0: पृथ्वी फरेचर जीवे
1: महादास तपि सर्थिवे
0: अगन माहे होमत प्राण
1: कर्ण कैसो भयवर भूमि दान
0: न्यौली कर्म करे बह आसन
1: जैन मार्ग संजय मत साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तभी होमे मैल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाहे
1: नानक गुरमुख नाम जगत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे
1: गर्व मानना मनते हुटे
0: सोच करे दिन अर रात
1: मन की मैल न तनते जात
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कहू न लिखिया धरे
0: जल तो वह बहु देह नीत
1: शुद्ध कावे काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतित बहुमूच
0: बहुत स्यान पजाम का पौ व्यापे
1: अनेक जतन कर तृष्णा द्रापे
0: वेख अनेक अगर नहीं बुझे
1: कोट पाप दगे नहीं सिजे
0: छूट स नाही उपायाल
1: मोहे व्यापे माया जाल
0: अवर करतूत सगली जम डाने
1: गोविंद भजन बिन दिल नहीं माने
0: हर का नाम जपत दुख जा

0: जामी
1: अपनी गतमित जानो आपे
0: आपन संग आप्रवराते
1: तुमरी उस्त तुम ते होए
0: नानक अवर न जान सकोए
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
0: सा संग दुर्मत मल हया
1: सगल उद्दम में उद्दम पला
0: हर का नाम जपो जी सदा
1: सगल बानी में अमृत बानी
0: हर को जसन रसन बखानी

0: ताको अंधा जानत दूरे
1: जाकी टहल पावे दरगह मान
0: तिसे बिसारे मुग्ध जान
1: सदा सदा इह भुलण हार
0: नानक राखन हार पार
1: लखन त्याग कौडी संग रचे
0: साच छोड़ झूठ संग मचे
1: जो छड़ना सो आस पर कर माने
0: जो होवन सो दूर पराने
1: जोड़ जाए तिसका शर्म करे
0: संग सहाय तिस पर हरे
1: चंदर लेप उतारे तोए
0: गर्द प्रीत प्रसम संग होए
1: अंध कूप में पतत बिकराल
0: नानक काढ लिहो प्रभु दयाल
1: करतूत पशु की मांस जात
0: लोक बचारा करे दिन रात
1: हर पेख अंतर मल माया
0: शख्स नहीं कछ करे छपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोभ समान
1: अंतर अगन बाहर तन

0: तिरछाकर कोरख मन माहे तिसको सिमरत परम गत पावे तिसे त्याए सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
0: आठ पैर सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा ध्याइए ध्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे
0: तिसे त्याग कर तवर लंबावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पैर ताका जस गावी जय
1: प्रसाद तू सबको माने
0: मुक्ता को जस रसन बखान

0: साध के संग मुख उज्जवल होत,
1: साध संग बल सगली खोत,
0: साध के संग मिटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साध के संग बूझे प्रवनेरा,
1: साध संग सब होत नवेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक पर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर फुल्ले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत रस पुंचा,
0: साध संग हुए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कतहू तावे,
1: साध संग अलदत मन पावे,
0: साध के संग माया ते पिन,
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन

0: संग नाही हो ताप,
1: साध के संग तजैसा व्याप,
0: अपे जाने साध बढ़ाई,
1: नानक साध प्रभु बन आई,
0: साध के संग न कभू तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्ता गोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: संग पाए नाम निधान,
1: नानक साधु के करबान,
0: के संग सब कुल उधार है,
1: साध संग साजन मीत कठम निस्तार है,
0: साधु के संग सो तन पावे,
1: जिस तन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सो पास और देवा,
0: साधु के संग पाप पलायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सब लजनम,
0: साध के संग नहीं कछ काल,
1: दर्शन पेट तो होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नरक पर हरे,
0: साध के संग यहाँ उहाँ सुहेला,
1: साध संग विचरत हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न मिथ्या जावे,
0: पार ब्रह्म साध हृदय बसे,
1: नानक उतरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर पर निस्तरे,
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा,
1: साधु के संग कट कट मीठा,
0: साध संग पे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध की महिमा वेद न जाने,
1: जेता सुने तेता विख्याने,
0: साध की उपमा त्यो गुणते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा व्यंत,
0: साध की

ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वासी। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा। ब्रह्म ज्ञानी लैतावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी सफल भला। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी सर जीवे नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।

0: जन्म है जीवे है मर है
1: कई कोट जोनी फिर है
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में चिंत
0: जह जय पाना तह तह राखे
1: नानक स

0: तत्के बेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पैसा सदरी जीवे
0: कई

भिखारी नीच का साजा कबू पला पला कहावे दुर प्रसाद नानक सच कहे प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान कबु सिद्ध साधक मुख ज्ञान अनक जोर पर मैं भर लिया जो प्रभावे तिवे नचावे नानक दूजा रघुनाथ होए।

0: चिंता जिस मन माहे
1: इससे व्यर्था कोई ना है।
0: मन मेरे सदा हर जाप
1: अविनाशी प्रव्यापे आप
0: किया कछु न होए
1: जे सो प्राणी लोचे कोए
0: नाही तेरे किच काम
1: गत नानक जापे कहर नाम
0: बंध होए नाही मोह
1: रब की जोत सगल कट सोहे।

कर पाया सोई होग। इसका मंत्र न जाने होर, सर्व दुख सुनिए करता कै, तब मैं तपीसर कृष्ण में भोगी, नानक तिस पुरखा किने अंत न पाया, सकल देव हारे अवगाहे, सकल परोई अपने सूत, जन दास नाम त्यावे से, जन्म मरे फिर आवे जाए।

के तारे सगल आकार, नाम के संग उदरे सुन सरवण, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए, पुरख सत के बल प्रदान, सत पुरख सब माहे समाणी, मूल सत सत उत्पत, जिसे बजाए तिसे सब भली।

संगत होए। आपे जाने अपनी मित गत, अवर न बूझ कत विचार। नानक गत सुभावे सो हरतिया, जिन बुझे

0: वचन कर अगाने
1: मन संतोखा तम पतियाने
0: पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र
1: अमर दृष्टि के होए संत
0: बेअंत कीमत नहीं पाए
1: नानक जिसवावे तिसलै मलाए
0: जेवा एक उस्तत अनेक
1: सत पुरख पूर्ण विवेक
0: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
1: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
0: निरा हार निर्वैर सुख दाई
1: ताकी कीमत किने न पाई
0: अनक भगत बंधन नित कर है
1: चरण कमल हृदय सिमरे
0: सत बलिहारी सत गुर अपने
1: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
0: इहो हर रस पावे जन

0: भक्त करो मन लाए
1: मन वांछत नानक फल पाए
0: साधना चाल स्थिरे तना
1: तू क्या लपटावे मूर्ख मना
0: सप्तमीत कटांबर वनता
1: इनते कहो तुम कवन सनाता
0: आज रंग माया विस्तार
1: इनते कहो कवन छटकार
0: सहस्ती रथ सवार

0: सुख होए,
1: हरस पावे बिरला कोए,
0: जाख्या से जन तृप्ताने,
1: पूरन पुरख नहीं डोलाने,
0: गुर भरे प्रेम रस रंग,
1: उपजे चाओ साध के संग,
0: सरन आन सब त्याग,
1: अंतर प्रवास अंधेर लाग,
0: भागी जप्या प्रभु सोए,
1: नानक नाम रते सुख होए,
0: देव की मनसा पूरी पई,
1: सतगुर ते निर्मल मत लई,
0: जन को प्रभु होयो दयाल,
1: सेवक इन्हों सदा निहाल,

0: कछ ना दृष्टेता
1: पाप हुंता कहते होता
0: उतारी अपन सुन समाद
1: तबै क्रोध के संग मात
0: इसका वर्ण चिन्ह न जापत
1: तब हर सो को से व्यापत
0: अपने आप आप पार ब्रह्म
1: तब मुखा के सोवत परम
0: अपन खेल आप वर्ती जा
1: नानक करने हार ना दुर्जा
0: प्रभु केवल तही
1: तब बंद मुक्त को किसको गने
0: अभी के हरि अगम अपार
1: तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार
0: निर्गुण प्रभु सह सुभाए
1: तब शिव सत कहो के तठाए
0: जब आपे आप अपनी ज्योत तहे
1: तब कवन निडर कवन कत डरे
0: अपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम अपार
0: सी सुख अपने आसन
1: ते जन मरण कहो कहा विनाशन
0: करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास कहो के सोए
0: अपविगत गोचर प्रवेका
1: तब चित्र गुप्त के सुपुष्ट देखा
0: नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपने आप आप ही अचर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही अपर्जा
0: निर्मल पुरख पुरख पद होता
1: तै बिन मैल कहो के अतोता
0: निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तै कौन बहान कौन अभिमान
0: केवल जगदीश
1: तै चल चिदर लगत को केश
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तै किसे फूक अंतर पतावे
0: अंत रावण करणे हार
1: नानक करते का नाही समार
0: अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई
0: सर्व कला ते परवीन
1: तै वे

0: गुर का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर
0: भेखा सा सिमरो गोविंद
1: मन अंतर की उतरे चिंता
0: सनित त्याग होत्र।

0: कुशल सहज आनंद
1: सास संग पज परमानंद
0: हरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित भव नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: बाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का हे आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल हे रतन
0: संत कमावत हो तो उधार सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
1: सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजे
0: जगपाल महात के माथे
1: नानक उतरे तिनके साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभाव मिलाए
0: हिट गए बैर पए सवरेन
1: अमृत नाम सात संग लैन।